0: हमने फोन की शुरुआत कैनिंग से दृष्टि कहा था कैमरा
1: क्लियरिंग कैनिंगटन.
2: Stop. There's a guy in black top and a black bag going down on a slater with no ticket. Over.
1: Yeah, last call sign. Where are you? Yeah, last call sign. Calling for cameras. Where are you?